0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है, इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं,
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है? जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
0: जी रहे हैं।
1: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं, और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खुश होते हैं, और आनंद का जो
0: क्षण होता है
1: वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पर घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियां हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
0: देखिए, जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, यानी 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
1: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा, और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा, और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
0: और आप क्या करना चाहिए?
1: गीत सुनना चाहिए,
0: तो सुनते हैं गीत।
2: सखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।

0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और पगनीरा बेगम जो है नक्शी कथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती
1: जी।
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है, तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था। और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जी।
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
0: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वे कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
0: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दे और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दे, आत्मनिर्भर होने दे।
1: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
0: यानी देखिए ना,

0: आपकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
1: बिल्कुल। और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
0: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
1: गीत सुनेंगे,
0: तो एक गाना सुनते हैं।
1: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी
1: हमारा
0: मजाक
1: चेहरा
0: में
1: वैसा
0: बोलते
1: ही
0: हैं
1: हो जाए।
0: वैसा ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
1: हाँ,
0: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
1: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
0: हाँ
1: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई। तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
0: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही
1: वैसे दीपा,
0: नहीं।
1: पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
1: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
0: हाँ
1: फोटोज,
0: बिल्कुल,
1: ये अनगिनत यादें होती है ना,
0: बहुत
1: और
0: सारी
1: कुछ
0: जी।
1: तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है, और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
1: और
0: जाता है, और फिर वो बातें पता नहीं कहाँ तक चली जाती
1: और
0: है।
1: उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
1: कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी

0: फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी सुंदर यादें है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली की एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं, जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं, कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है, एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है, जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी, यहां तक कि स्कूल में भी वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात,
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं, खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है, एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था, अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे,
0: अब गाना सुनेंगे,
1: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक,
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है। तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है। इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे। और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाए।
1: हाँ,
0: ये पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं ऐसा ही
0: काम करते थे।
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं,

0: यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो, बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़की के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
1: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है। बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
0: बिल्कुल। वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है, उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है, तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है। बच्चे अपनी ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है। बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं, तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती, तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
0: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करेंगे?
0: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई

0: कर ली है, और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी की उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं, और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
1: बिल्कुल। और आज के जमाने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
0: बहुत
1: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
0: ले सकती है, अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर सकती है। और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
0: पूरे
1: उस
0: परिवार
1: को होता है।
0: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, ने पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल।
0: और अब गाना सुन ले,
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना।
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है। अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा
1: होता तो
0: है ना। हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया। इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है
0: ना,
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो करें ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले,
1: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के दिन निमित्त श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन का मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: तो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती?
1: जी सर, जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश, अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ। आपका तो बहुत पुराना श्रोता हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश आलू फरमाइश
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: आज ही है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है
0: जी।
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब मौसम की बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल साहब,
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना। तो साहब फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री।
0: जरूर जरूर।
1: बोल है घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सजन आ
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता है आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन में दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी, जी। और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मंच चाहे गीत।
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरी बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो अच्छा। करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँच जाते हैं, कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आई ना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओहो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन, आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमर।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर काटिया थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: है जी, अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी जी पप्पू जी, वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए?
1: गांव में सर, मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है, मैकेनिक का काम में करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी विविध भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं विविध भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, बहुत भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी जी, न्यूज एनआईआर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, और गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए तो

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुनें।
0: जी जी बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में

0: बारात बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: गर्मियों के 40 दिन बारात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान, ये 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
1: अच्छा, तो ये बारात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते हैं
0: के समय? जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंडी रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ।
1: आपकी नज़र से वो गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
0: हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है, ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है। जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
1: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
0: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
1: नहीं, वो तो है, आपके यहाँ आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
0: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना, और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
1: जी,
0: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
1: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
1: जी,
0: तो मुझे एक वीर जारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में, ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नजारे देखकर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं कहाँ।
1: क्या बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है, सर इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जी कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा, और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत, इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240002462। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के ठीक 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सरिता चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। और हमारी बहनों कैसे हो? आशा करते हैं हमारी बहनों का जीवन खुशियों से भरा हो। और जीवन में खुशी तभी मिलती है जब हमें सफलता मिलती है। हौसलों को जोड़कर पंख बना लेते हैं लोग, उड़ने के लिए सपने सजा लेते हैं लोग। अगर हाथों में कामयाबी की लकीरें ना हो तपाकर खुद को कुंदन बना लेते हैं लोग। बहनों आज हम बात करेंगे सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति पर। मनुष्य की इच्छा शक्ति ही सफलता की पहली सीढ़ी है, या यूं कहिए सफलता के लिए इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इच्छा शक्ति से हम आलस्य पर काबू पाने और चुनौतियों का डटकर सामना करने में सक्षम होते हैं। यह बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। इच्छा शक्ति हमें कठिनाइयों का सामना करना सिखाती है। बहनों जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य स्पष्ट हो तो एक स्थिर दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए। लक्ष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है जिससे हम अपना भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। बहनों जैसा हम सोचते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। सकारात्मक विचार हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जो लोग 24 घंटे में से 10 घंटे नकारात्मक बातें करते हैं तो वे धीरे धीरे नकारात्मक सोचने लगते हैं। फिर उन्हें दुनिया के हर इंसान में बुराई नजर आने लगती है। यदि हम ये ठान लें आज दिन भर हम सोचेंगे जो अच्छा ही सोचेंगे तो निश्चित ही हमारा दिन अच्छा रहेगा। कई बार हम कुछ ऐसे लोगों की संगति में फंस जाते हैं जो हमेशा अपने दुखों की ही बात करते रहते हैं। जीवन में खुश रहना है तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हंसमुख हो, ऊर्जावान हो, क्रोध नहीं करते हो, जिनके साथ रहने से एक नई प्रेरणा मिलती है, जो आपको सही राह दिखाएं, आपका हौसला बढ़ाएं। मैंने सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। खुद पर भरोसा होगा तो हम कठिन समय में भी लड़कर लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को बल देती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं परंतु हमें विषम परिस्थितियों में कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मविश्वास मनुष्य के जीवन का आधार है। मैंने प्रतिदिन कोई एक ऐसा काम करें जिससे आपका मन लगे। ऐसा करने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है। बहनों कहते हैं ना, अनुशासन ही सफलता की धुरी है। यह वह नींव है जिस पर सफलता का विशाल भवन खड़ा हो सकता है। अनुशासन की डोर के सहारे सफलता की सीढ़ियों को आसानी से चढ़ा जा सकता है। जो अनुशासन से रहते हैं वह शारीरिक और मानसिक रूप से सबल होते हैं। प्रकृति अनुशासन की सबसे बड़ी शिक्षक है। ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, पवन, ये सब हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। मैंने समय से उठना, नहाना, नाश्ता करना, भोजन करना, जितने भी दैनिक कार्य होते हैं ये सब अनुशासन से करते हैं, तो यह गुण सफलता के मार्ग पर ले जाने में मदद करते हैं। इसके बिना प्रगति नहीं हो सकती। यह दृढ़ता और समर्पण को विकसित करता है। अनुशासन स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। अनुशासन से हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।

हमारी अच्छी आदतों का विकास होता है, सहनशीलता और सहजता की क्षमता का विकास होता है, जो हमें अवसरों को पहचानने में मदद करता है। सामाजिक जीवन में हमें अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। बहनों, कोई भी कार्य करें, उसे पूरा जरूर करें। जो काम आज करना है आज ही करें, कल पर ना टालें। बहनों, सकारात्मक दृष्टिकोण और अभ्यास से इच्छा शक्ति को लगातार बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, प्रतिदिन वॉक करें, ताजा और पौष्टिक आहार लें। यह हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। बहनों, सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। सफलता के रास्ते कभी आसान नहीं होते, मुश्किल दिनों के कभी प्रमाण नहीं होते। पहचान मिलती है मंजिल पर पहुंचकर, रास्ते कभी किसी की पहचान नहीं होते। बहनों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये मधुर गीत।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी हमारी बहनों ने सुना ये गीत, आशा करते हैं पसंद आया होगा। बहनों, आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है, जो हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों, संपादकों और प्रसारकों के खेल के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो कि हमें खेल आयोजनों की सटीक और ताजा जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। यह संस्था 2 जुलाई 1924 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान बनाई गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है और खेल पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना है। मैंने खेल पत्रकारिता खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह खेलों की जानकारी और कहानियां प्रस्तुत करते हैं, जो कि दर्शकों को जागरूक करने के अलावा खेलों के प्रति प्रेरित करते हैं। बहनों, भारत में खेल पत्रकारों का प्रतिनिधित्व भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का सदस्य है। बहनों, ये तो हुई विश्व खेल पत्रकार दिवस की बात। आइए अब आपका करवाते हैं एक और गीत के साथ मनोरंजन, तो सुनते हैं ये गीत।

अभी हमारी बहनों ने सुना ये गीत, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। आइए बहनों, अब बात करते हैं बरसात के मौसम में फल व सब्जियां खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर। बहनों, बारिश के दिनों में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण फूड पॉइजनिंग, पेट में संक्रमण, वायरल फीवर और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सिर्फ साफ सफाई का ध्यान रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि खान पान में भी विशेष सावधानी बरत

अभी हमारी बहनों ने सुना ये गीत, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। आइए बहनों, अब बात करते हैं बरसात के मौसम में फल व सब्जियां खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर। बहनों, बारिश के दिनों में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण फूड पॉइजनिंग, पेट में संक्रमण, वायरल फीवर और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सिर्फ साफ सफाई का ध्यान रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि खान पान में भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। खासकर जो फल व सब्जियां जो हम खरीद रहे हैं, क्या वे सही हैं? कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बहनों, मानसून में हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया, फंगस और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आसानी से पनप जाते हैं। बारिश के मौसम में फल और सब्जियां खरीदते समय यह देखें, जो हम फल या सब्जियां खरीद रहे हैं वो गली सड़ी तो नहीं है। इसके लिए सब्जियों को हमेशा हल्का सा काट कर या सूंघ कर चेक कर लें, अंदर कीड़े तो नहीं है और उनमें बदबू तो नहीं आ रही। फूल गोभी हमेशा हल्की और सामान्य आकार में खरीदें। ज्यादा भारी गोभी अंदर से अक्सर खराब निकलती है। गुथी हुई गोभी में कीड़े नहीं दिखाई देते, इसलिए खिला हुआ गोभी का फूल लेना चाहिए। हमेशा सूखा पालक लें, गीला पालक सड़ जाता है और उसमें बदबू आने लगती है। ज्यादा हरा रंग ना हो पालक का ये जरूर देखें। कई बार सब्जियों में हरा रंग डालकर सब्जियों का रंग गहरा कर देते हैं, जिससे सब्जियां ताजा लगें। मैंने कई लोगों को कटे हुए फलों को खरीद कर खाना काफी आसान लगता है, लेकिन सेहत के लिहाज से हमें पहले से कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। मैंने बहुत से ठेलों वालों को देखा है, फलों को काट कर रख लेते हैं, उन पर धूल मिट्टी, मक्खी मच्छर आदि होते हैं। साथ ही कटे फलों पर वायरस, फंगस तेजी से बढ़ने की संभावना होती है। बहनों, कटे हुए फल को कभी भी ना खरीदें। मौसमी फलों का सेवन करें। इन दिनों जामुन, लीची, चेरी, सेब जैसे फल खाएं। आजकल तरबूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, इन्हें आप फ्रिज में ठंडा कर लें और फिर काट कर खाएं। जो फल बहुत चमकदार दिखें उन्हें ना खरीदें, उन पर वैक्स की कोटिंग हो सकती है। जहां तक हो सके बारिश के मौसम में ऐसे फल खाएं जिन पर छिलका हो, जैसे केले, लीची, आम, अनार, पाइनएप्पल आदि। जिनका छिलका नहीं होता उन फलों को साफ पानी से अच्छे से धोएं। बारिश में मौसम में जल्दी खराब हो जाते हैं ये फल जो छिलके वाले नहीं होते। बहनों, बस इन बातों का आप ध्यान रखेंगी फल और सब्जियां खरीदते समय तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए अब अंत में आपको सुनवा देते हैं एक और गीत।

बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। फिर आएंगे आपका मन पसंद कार्यक्रम महिला जगत लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ सरिता चौधरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी।

दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त आरजे वंशी को और आपका अपने फेवरेट वीडियो शो युग वाणी में स्वागत करती हूं। आपने कभी सोचा है या कभी गौर किया है, कभी कभी हम किसी इंसान से नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी अपनी उम्मीदों से प्यार करने लगते हैं, और फिर जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो हम कहते हैं उसने मुझे बदल दिया। जबकि सच ये होता है, बदला वो नहीं, टूटा हमारा भ्रम था। क्योंकि लगाव अक्सर प्यार नहीं होता, वो मन का बनाया हुआ एक खूबसूरत भ्रम होता है। तो दोस्तों आज की इसी भ्रम की

परतें खोलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, लगाव आखिर है क्या? किसी का साथ अच्छा लगना, किसी की आदत पर जाना, किसी के बिना दिन अधूरा लगना, ये सब बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी पहचान किसी एक इंसान, चीज़ या रिश्ते पर टिक जाए तो समझ लीजिए वहाँ प्यार कम लगाव ज़्यादा है, क्योंकि प्यार आज़ाद करता है और लगाव कैद। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बच्चा समुद्र किनारे रेत का महल बना रहा था। उसने पूरे मन से महल बनाया, लोग तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, एक लहर आई और पूरा महल बहा ले गई। बच्चा रोने लगा, तभी उसके दादाजी बोले, बेटा रो क्यों रहा है, महल रेत का था, तूने उसे अपना समझ लिया, दर्द इसलिए हुआ। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो चीज़ें, जो लोग कुछ समय के लिए हमारे पास आते हैं, हम उन्हें हमेशा का मान बैठते हैं। यहीं से शुरू होता है लगाव का भ्रम। हम लगाव में असलियत क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम सामने वाले को जैसा है वैसा नहीं देखते, हम उसे जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखने लगते हैं। हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी चुप्पी को भी प्यार समझ लेते हैं, उसकी मजबूरी को भी अपने लिए एहसास मान लेते हैं। और फिर एक दिन असलियत सामने आती है, तब दर्द इंसान नहीं देता, हमारी इमेजिनेशन देती है। एक खूबसूरत और बात सुना देती हूँ। किसी ने पूछा, दिल सबसे ज़्यादा कब टूटता है? जवाब मिला, जब इंसान नहीं उससे जुड़ी उम्मीदें टूटती हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि दिल रिश्तों से कम अपनी बनाई कहानियों से ज़्यादा जुड़ जाता है। लगाव सिर्फ इंसानों से नहीं होता, कभी मोबाइल से, कभी पैसे से, कभी शोहरत से, कभी अपने अहंकार से, कभी अपनी बात मनवाने की जिद से, और सबसे खतरनाक अपनी बनाई हुई छवि या इमेजिनेशन से। हम चाहते हैं सब हमें अच्छा कहें, सब हमारी तारीफ करें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई से नहीं, अपनी छवि मतलब इमेजिनेशन से जुड़े हुए थे। अच्छा, एक सवाल, अगर कोई इंसान आज आपकी जिंदगी से चला जाए तो क्या आपकी पूरी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो शायद आप प्यार में नहीं, लगाव में हैं। क्योंकि प्यार किसी को पकड़कर नहीं रखता, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। कुछ रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि हम कहते तो हैं तुम्हें आजादी है, लेकिन दिल में चाहते हैं तुम सिर्फ मेरे हिसाब से चलो। यहीं से प्यार धीरे धीरे लगाव में बदल जाता है, और फिर रिश्ता नहीं जिम्मेदारी बन जाता है। एक शायरी सी बात पे, लगाव की डोर बड़ी नाजुक होती है, लगाव की डोर बड़ी नाजुक होती है, टूटे तो आवाज़ नहीं आती, मगर दिल के किसी कोने में उम्र भर खामोशी बस जाती है। आखिर असलियत क्या है? असलियत ये है, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना समय, ना मौसम, ना लोग, ना सिचुएशंस, सब बदलता है। जो इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेता है वो शांत रहता है, जो हर चीज़ को पकड़ कर बैठा रहता है वो हमेशा परेशान रहता है। एक गहरी या दिल को छू जाने वाली बात बताती हूँ। पेड़ कभी अपने पत्तों से ये नहीं कहता मत गिरो, क्योंकि उसे भरोसा होता है नई कलियां फिर आएंगी। लेकिन इंसान जो चला गया उसी को पकड़ कर बैठा रहता है, और जो आने वाला है उसे देख ही नहीं पाता। इसलिए दोस्तों, खुद से जुड़िए। जब तक आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेगी तब तक आप दुखी रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद का साथ पसंद करना सीख लिया, उस दिन कोई भी आपको अकेला महसूस नहीं करा पाएगा। तो इसी बात पर एक और शायरी हो जाए, जो चला गया उसे जाने दो, जो चला गया उसे जाने दो, हर मोड़ पर ठहरना ज़रूरी नहीं। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, हर कोई मुकद्दर होना ज़रूरी नहीं। तो दोस्तों, लगाव बुरा नहीं है, लेकिन अगर वही हमारी पहचान, हमारी खुशी और हमारी शांति बन जाए तो वही भ्रम बन जाता है। याद रखिए, जिसे पकड़ कर रखना पड़े वो लगाव है, जो बिना पकड़ के भी दिल में सम्मान बनकर रहे वही सच्चा प्रेम है। और लास्ट में बस इतना सा कहना चाहूँगी, रिश्तों को मुट्ठी में नहीं दिल में जगह दीजिए, रिश्तों को मुट्ठी में नहीं दिल में जगह दीजिए, क्योंकि मुट्ठी जितनी कसकर बंद होगी रेत उतनी ही जल्दी फिसलेगी। जी हाँ दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं एक छोटा सा म्यूजिक।

0: हाँ तो दोस्तों, जिसका आप इतनी देर से वेट कर रहे थे वो पल आ ही गया है। जैसा कि आप सभी को बताएं कि हम एवरी थर्सडे आपके लिए लाते हैं एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बिंदास बोल। इसमें हम क्या करेंगे, रैंडम लोगों के पास जाएंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनके मजेदार जवाब लेंगे। तो चलिए, आज का सवाल थोड़ा खतरनाक है और जवाब उससे भी ज्यादा खतरनाक। चलो मैं एक बार सभी श्रोताओं से ही पूछती हूँ कि आप बताइए, आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया वाली परफेक्ट गर्ल सच में होती है या फिर कैमरा ऑफ होते ही इंसान वापस अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है? आज इसी पर होगी खुल्लम खुल्ली बहस। तो चलो चलते हैं। देखिए, वहां पर ना कुछ ग्रुप खड़ा है, मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा मेरे आगे लड़कियों का ही ग्रुप है, ये बहुत मजेदार जाने वाला है। चलो एक बार उनसे जाते हैं, उनसे पूछते हैं, इस पर सवाल जवाब करते हैं। हेलो एवरीवन,
1: हेलो,
2: हाय,
3: हेलो,
4: नमस्ते,
5: नमस्ते।
0: अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी।
1: आप कौन है
6: बताए तो सही, आप है कौन?
0: मैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के युववाणी प्रोग्राम से हूँ और मैं आरजे वंशी का हूँ। एक छोटा सा सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ओके
6: ओके
5: ओके ओके,
0: हाँ बिल्कुल।
6: नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ।
1: अरे तो चुप रहे मैम, आप पूछो।
6: पूछो बेटा, पूछो।
0: अच्छा तो सवाल पूछने से पहले मैं चाहूंगी एक बार आप सब अपना इंट्रोडक्शन दे दें।
1: वंदना,
7: प्राची,
8: भाविका
9: और मैं रेखा।
0: आप मुझे बड़ी लग रही है इस ग्रुप में सबसे।
9: हाँ, मैं इसकी मम्मी हूँ वंदना की।
0: अच्छा ओके। अच्छा तो वंदना जी, मेरा आपसे सवाल है कि सोशल मीडिया वाली परफेक्ट गर्ल वर्सेस असल जिंदगी वाली लड़की, इस पे आप क्या अपना विचार रख पाएंगे हमारे सामने?
1: वंशिका, सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कि पूरी दुनिया सुबह 5 बजे उठकर योग करती है, ग्रीन जूस पीती है, किताब पढ़ती है और फिर सनसेट देखने चली जाती है। और मैं सुबह 10 बजे उठकर सोचती हूँ आज भी कल से शुरुआत करेंगे।
0: सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो प्राची जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगी?
6: इंस्टाग्राम वाली परफेक्ट गर्ल या मॉर्निंग रूटीन, उनका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? वेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, जिम, हेल्दी ब्रेकफास्ट और अ गुड कॉन्वर्सेशन विद देयर लव्ड वंस।
0: ओहो,
6: पर असल जिंदगी में मम्मी 3 बार चिल्लाती है, बेटा सूरज आधा आसमान पार कर गया है, उठ जाओ।
1: मैम आप ना इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब भाविका से पूछिए, वो क्योंकि वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर।
0: ओहो क्या बात है। चलो भाविका, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया वाली जो लड़की होती है, क्या वो असल जिंदगी में ऐसी होती है या नहीं होती?
10: अरे सुनो, सोशल मीडिया पर हमारी या किसी लड़की की फोटो देखकर लोग कहते हैं वाह वाह क्या नेचुरल ब्यूटी है। अरे भाई, उस फोटो के पीछे रिंग लाइट, 100 फोटोज, 15 फिल्टर्स, 10 एडिटिंग एप्स और 45 मिनट की मेहनत होती है।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया दोस्तों, आप सभी ने भी सुना। तो अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे, हाँ तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी अब।
1: हाँ,
0: कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे?
9: बेटा हमारे जमाने में फिल्टर सिर्फ पानी में लगाया जाता था,

0: क्या ओ, ओ, ओ, अच्छा ओके
1: पानी वाला फिल्टर और अब तो चेहरे पर इतना फिल्टर लगाते हैं कि भगवान भी सोचे कि ये मैंने ही बनाया है या एआई ने बनाया है।
0: बढ़िया बहुत सही। हाँ तो दोस्तों छोटा सा म्यूजिक ब्रेक ले लिया जाए और ब्रेक के बाद जरूर मिलेंगे, वापस कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं जाइए मत, हमारे साथ बने रहिए।

0: तो चलो दोस्तों एक रैपिड फायर करते हैं।
1: क्या होता है रैपिड फायर?
0: अरे मतलब एक गेम है, इसमें क्या होगा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी चार पांच, और आपको बिना सोचे समझे बिना कंफ्यूजिंग के 3 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होगा।
1: ओके
0: ठीक है, जो आपके मन में आया फटाक से बोल दो।
1: ओके ओके
0: शुरू करते हैं। पहला सवाल प्राची जी, आप बताइए परफेक्ट गर्ल किसे मानोगे?
1: जो हर फोटो में परफेक्ट दिखे, जो हर सिचुएशन में खुद जैसी रहे,
2: जो मेरी बेइज्जती पर भी हंस दे वही परफेक्ट है।
0: ओके ओके,
2: और जो अपने माँ बाप का सम्मान करे
1: वही सबसे सुंदर है।
2: वही सबसे सुंदर,
0: क्या बात है, बिल्कुल
2: वही सबसे खूबसूरत है।
0: तो देखो भाई, पहला राउंड जो है वो हमारी मैम जीती, इन्होंने कितनी अच्छी बात हम सभी को बताई।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ तो भाई दूसरा सवाल कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा झूठ?
1: नो मेकअप मेकअप लुक, जबकि मेकअप का पूरा बजट लगा होता है।
3: कैंडिड फोटो जिसके लिए फोटोग्राफर ने 57 बार बोला होता है एक बार और मुस्कुरा दो मैडम जी।
0: हाँ हाँ क्या बात है, सही बोला।
4: मैं ये बोलूंगी जो ये बोलती है ना कि जस्ट वोक अप और पीछे पूरी रिंग लाइट चमक रही होती है उनके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ। सही बात।
0: तीसरा सवाल, असल जिंदगी वाली लड़की कैसी होती है?
3: कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी स्ट्रांग होती है तो कभी थक जाती है, और वही उसे खूबसूरत बनाता है।
0: वाह क्या बात बोली। तो मैम आप बताइए कि असल जिंदगी वाली लड़की कैसी होती है?
2: जिसे हर समय परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं होती।
0: काफी अच्छी बात बताई आपने भी वंदना जी, आप बताइए।
1: तो गिरने से बेटर है कि उसे निकाल दिया जाए।
0: क्योंकि मैं तो निकाल के करती हूं।
4: और जो बर्गर खाते समय कैलोरीज नहीं गिनती, जिसका बर्गर खाते टाइम टमाटर नहीं गिरता,
1: तो इट्स बेटर ना टमाटर निकाल के खा लिया जाए।
0: अच्छा आप टमाटर निकाल के खाते हो
1: और क्या?
0: क्योंकि मैं तो निकाल के करती हूँ।
4: तो YouTube किया था कि बर्गर पब्लिक प्लेस पर मैं ऐसे बर्गर कैसे खाते
1: हैं? How to eat a burger in public place?
0: वाह। तो अब लास्ट में सबसे जरूरी सवाल, क्या सोशल मीडिया गलत है या सही?
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं। गलत तब है जब हम स्क्रीन देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगे और उसे कंपेयर करें।
0: देखो तो बोल भी कौन रहा है?
1: मैं बिल्कुल मैं।
3: हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कंपैरिजन वही सबसे बड़ा वायरस है। अरे दूसरों के हाईलाइट रील देखकर अपनी रियल लाइफ को जज मत करो।
0: मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
2: बेटा फूल कभी दूसरे फूल जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, हर फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, इंसान भी ऐसा ही है।
0: क्या बात है, मुझे लग रहा है ये एक एक्सपीरियंस माँ होने के साथ साथ मजेदार भी है और मुझे लग रहा है एक शायर भी है।
1: बिल्कुल,
0: एक बार जोरदार तालियां बनती है भाई। मैडम अपने लिए तालियां बजा रही है। वाह।
4: तो मतलब अगर मैं वो जो हीरोइन है ना स्त्रीव मूवी की श्रद्धा कपूर,
0: ओके
4: अगर मैं उसकी जैसी नहीं दिखती तो भी ठीक हूँ।
1: नहीं नहीं आपका फिगर तो ये नहीं कहता है, पर
0: तो क्या लगता है क्या कहता है?
1: क्या भारती जैसी बनती जा रही है?
0: इनको बनना उर्फी जावेद है।
1: फिगर तो बढ़िया, चोरी का कुछ नहीं।
2: हाँ बस इंसान अच्छे बनो, चेहरा उम्र बदल देती है, चरित्र पूरी दुनिया याद रखती है।
0: क्या बात, क्या बात बोली, मतलब सच में एकदम कहते ना कि दिल को अंदर तक छू गए। तो दोस्तों मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लगा आज।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: मैं यही चाहूंगी कि बस ऐसी कभी आप मुझे वापस से मिल जाओ अटके बटके।
1: बिल्कुल
0: ठीक है,
1: आएंगे
0: मिलते हैं फिर नेक्स्ट शो में। बाय बाय टाटा,
1: बाय बाय
5: बाय।
1: हम गए जाने
0: जाओ। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि सोशल मीडिया बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप

के अंदर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना टैलेंट दूसरों तक पहुंचा सकते हो। आज सच बताऊं तो मैं भी इंस्टाग्राम, मैं भी सोशल मीडिया यूज करती हूँ। मुझे काफी लोग जो आज जानते हैं सोशल मीडिया के जरिए ही जानते हैं। सोशल मीडिया इंस्पिरेशन दे सकता है लेकिन आपकी पहचान तय नहीं कर सकता। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, रियल बनिए। फिल्टर चेहरे को सुंदर बना सकता है लेकिन व्यवहार, सम्मान, ईमानदारी और आत्मविश्वास, ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई फिल्टर नहीं बना सकता। याद रखिए, लाइक से ज्यादा जरूरी है सेल्फ रेस्पेक्ट, फॉलोवर्स से ज्यादा जरूरी है वो लोग जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वही है जो खुद से प्यार करना सीख जाती है। तो दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, रियल रहिए, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा कॉपी से ज्यादा होती है। तो आइए इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

तो दोस्तों अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं खेल पत्रकार यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या होता है, कैसे बने, 12th के बाद क्या कोर्सेज हैं और करियर में इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दोस्तों मैं बताती हूँ कि खेल पत्रकार वो लेखक होता है जो वेरियस लोकेशंस या ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज के लिए मीडिया कंटेंट प्रिपेयर करता है। कुछ जर्नलिस्ट फुटबॉल, हॉकी या टेनिस जैसे कई स्पोर्ट्स की न्यूज कवर करते हैं, जबकि कुछ क्रिकेट में एक्सपर्टीज रखते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में करियर दिलचस्प और फायदेमंद हो सकते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की कोई छोटी रिपोर्ट लिखने से लेकर बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की डीप रिसर्च और एनालिसिस करना होता है। इनकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का सीधा ब्रॉडकास्ट देखना, रेडियो, टेलीविजन और अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स तैयार करना, टाइम लिमिट को फॉलो करते हुए ये चेक करना कि स्टोरीज डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिकेशन के लिए तैयार है, एक ऑथेंटिक स्टोरी तैयार करने के लिए कई प्लेयर्स और टीम के ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेना, अदर जर्नलिस्ट के साथ मिलकर स्टोरीज के लिए आइडियाज जनरेट करना और स्पोर्ट्स वर्ल्ड की न्यूज और इवेंट्स पर नजर रखना, स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना और पार्टिसिपेंट्स के पिछले खेलों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट और वीडियो के थ्रू वेरियस मीडियम्स का यूज करते हुए राइटर्स, एडिटर्स एंड सब एडिटर्स के एक ग्रुप के साथ मिलकर काम करना और उन्हें विश्वसनीय मतलब रिलायबल न्यूज आर्टिकल्स प्रोवाइड कराना, डिजीजेज, हेल्थ कंसर्न्स एंड इंजरीज के बारे में ज्यादा जानने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू करना, इंजरीज एंड प्लेयर सस्पेंशंस जैसी ताज़ा खबरों को कवर करना, डिफरेंट टीम्स एंड प्लेयर्स के बारे में जानकारी जुटाना, बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना और डाटा कलेक्ट करना। तो दोस्तों अब सबसे ज़रूरी सवाल कि खेल पत्रकार कैसे बने। देखिए सबसे पहले बैचलर्स डिग्री मतलब ग्रेजुएशन पूरी करें, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC कम्युनिकेशंस या इंग्लिश में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने की चांसेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों औरों से अलग दिखने के लिए कई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रेडियो और टीवी जर्नलिज्म, इंग्लिश, हिंदी या मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा भी करते हैं। ये स्पेशल कोर्सेज आपको इंटरव्यू टेक्निक्स, न्यूज़, राइटिंग्स, एथिक्स एंड जर्नलिज्म से रिलेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स की एजुकेशन देते हैं। तो भाई ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद जर्नलिज्म के फील्ड में और अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पर काम करें। आप फीचर स्टोरी लिख सकते हैं या एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि 12th के बाद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के कोर्सेज के बारे में। अगर आप टूवर्ड्स स्पोर्ट्स काफ़ी पैशनेट हैं और मैच के रोमांच को रोचक कहानियों में बदलने का सपना देखते हैं, तो 12th के बाद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक एक्सीलेंट करियर ऑप्शन हो सकता है। इसकी परफेक्ट स्टार्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लेने से होती है।

हम आप रिपोर्टिंग, मीडिया एथिक्स, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म सीखते हैं। एकेडमिक स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में करियर बनाने के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स ब्लॉग्स में एक्टिवली कंट्रीब्यूट देना चाहिए, लोकल स्पोर्टिंग इवेंट्स को कवर करना चाहिए और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मिलाकर स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुल सकते हैं। अब जानेंगे हम खेल पत्रकार बनने की पात्रता। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में करियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज वेरियस एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के उन स्टूडेंट्स के लिए ओपन हैं जिन्हें स्पोर्ट्स, मीडिया और स्टोरी टेलिंग का शौक है। हालांकि 12th क्लास में किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स की स्टडी करने से इस कॉम्पिटेटिव फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए एसेंशियल इंडस्ट्री नॉलेज, रिपोर्टिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास होना, अकेडमिक बैकग्राउंड आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अपने एडमिशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिनिमम टोटल मार्क्स को प्रायोरिटी देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन, एडमिशन प्रोसेस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन इंक्लूड हो सकता है। BJMC के किसी कोर्स में एडमिशन लेने से स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल मीडिया एंड स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे वो प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स पर करियर के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जानेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। डिजिटल मीडिया, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, OTT प्लेटफॉर्म और स्पोर्ट्स केंद्रित कंटेंट चैनल्स के रैपिड प्रोग्रेस ने एस्पायरिंग और एम्बिशियस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज की डिटेल्स दी है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में सबसे हाई डिमांड वाले करियर ऑप्शन में से कुछ हैं, जैसे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। ये इवेंट्स को कवर करता है, इंटरव्यू कंडक्ट करता है, स्टोरीज पर रिसर्च करता है और न्यूज आउटलेट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मैच रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, स्पोर्ट्स एंकर। ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स न्यूज प्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स शो की होस्टिंग करता है, मैचेस का एनालाइज करता है और लाइव टेलीकास्ट के मीडियम से ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। तीसरा, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर। ये टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के मीडियम से इवेंट कवरेज, प्लेयर इंटरव्यूज और मैच से पहले और बाद के डिस्कशन और कन्वर्जेशंस प्रेजेंट करता है। चौथा, क्रिकेट जर्नलिस्ट। क्रिकेट कवरेज, फीचर स्टोरी राइटिंग, मैच एनालिसिस, प्लेयर प्रोफाइल और टूर्नामेंट रिपोर्ट लिखने में एक्सपर्टीज होता है। उसके बाद, स्पोर्ट्स कमेंटेटर। ये ऑडियंस के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लाइव मैच कमेंट्री, एक्सपर्ट इंसाइट्स एंड रियल टाइम एनालिसिस प्रेजेंट करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि AAFT का जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तेज तर्रार दुनिया के लिए तैयार करने वाले कम्प्रीहेंसिव करिकुलम प्रोवाइड कराता है।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का युववाणी प्रोग्राम। आई होप आपको आज का प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा और आपने गानों को भी काफी एंजॉय किया होगा। अब समय आ गया आप सभी से विदा लेने का, तो अपनी दोस्त आरजे वंशिका को दीजिए इजाजत और मैं यही दुआ करूंगी कि आप हमेशा मस्त रहे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हंसते खेलते रहें। ओके, गुड बाय।

0: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, पीडियाट्रिशियन अलवर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
1: जी हाँ, मानसून के दौरान हल्की सर्दी या खांसी होना सामान्य है, लेकिन कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे को दो दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में घरघराहट की आवाज आए, खांसी लगातार बढ़ रही हो, बच्चा ठीक से खा पी ना पा रहा हो या सामान्य से अधिक थका हुआ और सुस्त दिखाई दे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। छोटे बच्चों की स्थिति कभी कभार बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां देने से भी बचना चाहिए। समय पर चिकित्सा सलाह लेने से बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है और संक्रमण के घर या स्कूल में फैलने की संभावनाएं भी कम हो जाती है।
0: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक

0: सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण यह नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। संध्या

7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम। जुलाई माह में की जाने वाली कृषि शस्य क्रियाओं पर विशेषज्ञ सुनीता वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक अकबरपुर, पंचायत समिति उमरेन। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 8:15 पर। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात 9 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 अंतर्गत लंदन के ओवल में खेले जा रहे इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल का सीधा प्रसारण। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11:05 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 अंतर्गत लंदन के ओवल में खेले जा रहे इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल का सीधा प्रसारण समाप्ति तक। श्रोताओं, कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:51 से। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झरोखा। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। प्रातः 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीबीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का आज से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्का वरिपल्ली

0: अधिकारियों से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि योजना के तहत पहले ही साल में 1,51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगले 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे गांवों में रोजगार बढ़ने के साथ ही वहां की तस्वीर बदलेगी।
1: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
0: केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अब किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मंडी से राष्ट्रीय कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिए ये योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे।
2: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण, निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गाँव को हम विकास से जोड़ सकें।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने देवमाली में 2 करोड़ रुपए की लागत से दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीबीजी रामजी योजना के तहत 2 लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सुशासन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने एआई का बुद्धिमता से उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री सिंह जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासनिक सोच में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के अनुरूप सरकार नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुशासन में बाधक बन रहे करीब 2000 नियमों को समाप्त किया है जिसमें दस्तावेजों के अनिवार्य सत्यापन सहित कई अन्य फैसले शामिल हैं। समारोह में श्री सिंह ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों का वितरण किया। इस साल 7 श्रेणियों में कुल 17 ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार शामिल हैं। डिजिटलीकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को गहरा और व्यापक बनाने के लिए दिए गए पुरस्कारों में ग्राम पंचायत श्रेणी भी शामिल है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में सभी राज्यों की भागीदारी रही, सभी ने अपने अनुभव साझा किए।
3: 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव, जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिस हैं, यहाँ साझी की। एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का, और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
0: सहकार सप्ताह के तहत आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए

0: सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 7 दिन की देरी से आया मानसून वर्तमान में टोंक, जयपुर और अलवर में सक्रिय है। भरतपुर के बयाना में आज तेज बरसात हुई, वहीं शहर के अलावा कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में 4 इंच से ज्यादा बारिश के समाचार हैं। चित्तौड़गढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। दौसा में तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में भी बरसात हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के आगामी 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: आज मानसून के समय से 1 सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट के ऊपर बना हुआ है, साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: राज्य में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम, मच्छर नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि मॉनसून के दौरान एडीज मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना और आमजन की सक्रिय भागीदारी ही डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न विभागों का सहयोग लेते हुए समुदाय स्तर पर कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
2: डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढकें। जुलाई 2026 में जो डेंगू के लिए माह मना रहे हैं, इसके अंदर चिकित्सा विभाग के अलावा शहरी, ग्रामीण, पंचायती राज, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन, नगर पालिका, स्थायी निकाय, गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से स्थानीय और धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने और तथा 3 दिन के समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। श्री यादव आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। श्री यादव ने बताया कि सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। ये सम्मेलन देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी लाने और वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया है। आरएएस भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अब 29 नवंबर के स्थान पर 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अगले साल 1 और 2 मई को आयोजित होगी। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा पहले

0: 6 दिसंबर को होनी थी। इसके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीवीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापाराम ने तैयार किया है। फलौदी जिले में इन दिनों जल संरक्षण की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जन सहयोग से रेत में दबे गुलाब सागर, पणिहारी और सेलड़ी तालाबों के एकीकरण का काम किया जा रहा है। इससे इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर एक बड़े जलाशय का स्वरूप दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बीते दिनों कामों का निरीक्षण किया और इससे जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन किया। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में पेयजल और स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और जल स्रोतों के संरक्षण पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुधार करने, चेतावनी बोर्ड लगाने तथा आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और आवश्यक निगरानी व्यवस्था पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में लंबित आवेदनों के निस्तारण और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा हुई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रशासनिक अनुभव साझा किए गए। अधिकारियों को जनसेवा, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के महत्व से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने बापीणी उपखंड के इशरू गांव में बीते दिनों रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली और मुआवजे से संबंधित समस्याएं उनके सामने रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। फलौदी विधायक पब्बा राम विश्नोई और जिला कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान, नियंत्रण कक्षों की स्थापना और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 86,000 से अधिक किसानों को 23वीं किस्त की राशि का लाभ मिला है। किसानों के बैंक खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फलौदी दुर्ग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों में 1,21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत 583 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 519 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 64

0: हवाई मार्ग से धार्मिक यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 153,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए जिले भर में सैकड़ों पोलियो बूथ स्थापित किए गए और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। फरौदी शहर में भामाशाहों के सहयोग से नए यातायात पुलिस थाने का निर्माण किया गया है। इसका बीते दिनों उद्घाटन हुआ। पुलिस विभाग ने इस पहल को जन सहयोग का अच्छा उदाहरण बताया। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी राम जी माथे आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। जयपुर में 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो थियो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एआई ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य में चौमासा री बिरखा स्वरूफी, आवता 24 घंटा में कई ठोड़ा भारी बारिश रा आसार। और प्रदेश में ओ महीनो एंटी डेंगू माह रा तौर मनायो जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी रातेत आज आखा देश में काम शुरू है क्यों। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश रा मुक्कावरी पल्ली गांव इनरी शुरुआत कीनी। ये मौके श्री चौहान कहो कहीं रतेत पहली साल में 1,51,000 करोड़ रुपया रो प्रावधान करीचियो है, जबकि आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला, जिनो गांव में नौकरी धंधा रा मौका बधवा सागे वठरी तस्वीर बदलेला।
2: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
1: केंद्रीय मंत्री ऐलान की नोक देश राकिणी राज्य में मजूरी 300 रुपया रोजिनाओं कम नहीं फैला। वे बतायो कि वीबीजी रामजी ने असरदार तरीका लागू करण सारू प्रशासनिक खर्च 6.9% करती उचियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ब्यावर जिला री मसूदा कृषि उपज मंडियों वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए इन कार्यक्रम जुड़िया। इन दौरान वे वीबीजी रामजी रा राज्य स्तर रा कार्यक्रम में कहो कि गांव री बरकत और विकास सारू वीबीजी रामजी लाइचियो है। श्री शर्मा कहो कि इन जरिए पानी बचावन गांवाई हलका माए बुनियादी ढांचा विकास आजीविका और आपदारों सामो करण जुड़िया काम कराया जावेला।
3: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण, निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गाँव को हम विकास से जोड़ सकें।
1: मुख्यमंत्री इमो के करीब 424 करोड़ रुपया रा विकास रा कामारी शुरुआती कीनी। वह देवमाली माए 2 करोड़ रुपया रा खर्चों जात्रुआ सारू आराम घर बनावन रो ऐलानी कीनो। कार्यक्रम माए श्री शर्मा वीबीजी रामजी रा तेत दो जना ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दीना। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुशासन री जरूरत बन क्यों है। वह आज जयपुर में राखी जया 2 दिन रा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा समापन समारोह में बोल रहा। जितेंद्र सिंह एआई ने बुद्धिमानियों काम लेवन री जरूरत माथे

0: जोर दी नौ ए मौका केंद्रीय मंत्री कहो कि विकसित भारत 2047 रो सपनो सांचो करण सारो प्रशासनिक सोच माए बदलाव जरूरी है वह कहो कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस रा मंत्र रा हिसाब हो सरकार जनता माथे खास ध्यान देवन वाला साफ कोई सागे और जवाबदेह प्रशासन ने बधावो दे रही है। डॉक्टर सिंह कहो कि केंद्र सरकार सुशासन माए अड़चन पैदा कर रहा करीब 2000 नियम खत्म करती ना है जहां माए कागजात रा जरूरी सत्यापन समेत कई फैसला शामिल है। जलसा माए श्री सिंह 7 श्रेणियां माए 17 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार तीना आमाए 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार ही शामिल है। डिजिटल तरीकाओं जमीनी लेवल माथे सेवा पुगावन ने और बेहतर बनावन सारू दिया जाए इनाम माए ग्राम पंचायत श्रेणी शामिल है। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री सिंह कहो कि AI मौजूदा दौर माए जिंदगी री जरूरत बन गयो है।
1: ये 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं यहाँ साझी की, एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का, और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
0: सहकार सप्ताह रा तहत आज जयपुर माए राज्य स्तर रो मान जलसो राखी चियो। जलसा माए गांवई हलका माए नवाचार तकनीकी दक्षता और बेहतरी सारू काम करण बाबत सहकारी संस्थावां रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करी चियो। जलसा माए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक कहो कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि सब एक के लिए रा सिद्धांत माथे आधारित जनता रा भलारी मजबूत सोच है। वह कहो कि एका भरोसा और भेड़ी कोशिशाओं हर चुनौती रो सामो करता थका समावेशी और लगातार विकास रो लक्ष्य हासिल करो जा सके है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य रा उगनी हलका माए चौमासारी बिरखा शुरू की है। मौसम विभाग रे मुजब 7 दिन मोड़ा पाछे टोंक जयपुर और अलवर माए चौमासारी बिरखा वेवन लगी है। भरतपुर जिला रा बयाना माए जोरदार में बरसियो। प्रतापगढ़ माए 4 इंच उम्बत्ती बिरखा रा समाचार है। चित्तौड़गढ़ माए तेज बरसात हुई। दौसा माए भी तेज बरसात कई हलका माए पानी भर गयो। अलवर शहर और आरएसआर हलका माए चोखो में बरसियो। राजधानी जयपुर माए बादला मंडिया रहा। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता 2-3 दिन माए प्रदेश रा कुछ और हलका माए चौमासारी बिरखा सरूफे वन रा आसार है। वे बतायो कि आज उदयपुर कोटा अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग माए कठे कठे बादना री गाज सागे बिरखा वेवन री संभावना है जबकि कोटा संभाग रा जिला माए कठे कठे घनी जोरदार बिरखा वेवन रा आसार है।
2: आज मानसून तय समय से एक सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट के ऊपर बना हुआ है, साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, साथ ही साथ कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: राज्य माए ओ महीनो एंटी डेंगू माह रा तौर मनायो चावेला। इन दौरान डेंगू री रोकथाम मच्छरा माथे काबू करण और जनता माए जाग जगावन सारू चिकित्सा विभाग री ओर जांच करें सफाई करें और ढकें मुद्दा माथे खास अभियान चलायो चावेला। जयपुर रा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत बतायो कि चौमासा माए मच्छर पैदा होवन री संभावना बढ़ जावे है। डेंगू रो असरदार टीको या खास इलाज

0: वेवणु मच्छर पैदा वेवण रे ठोड़ा खत्म करण और जनता री भागीदारी बचाव रो सबो असरदार तरीको है। चिकित्सा विभाग जनताओं अभियान माई मदद करण और घर कमठाना और आर एस आर साफ सफाई राखण री अपील की नी है।
1: डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढकें। जुलाई 2026 में जो डेंगू के लिए माह मना रहे हैं, इसके अंदर चिकित्सा विभाग के अलावा शहरी ग्रामीण पंचायती राज, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन, नगर पालिका, स्थायी निकाय, गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से स्थानीय और धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने और तथा 3 दिन के समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC भर्ती परीक्षा हमारा कार्यक्रम माए थोड़ो बदलाव की नो है। RAS भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अब 29 नवंबर री बजाय 6 दिसंबर न फैला, जबकि RAS मेंस आवता साल 1 और 2 मई न राखी जावेला। माध्यमिक शिक्षा विभाग री प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर न फैला। इनके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर न ली जावेला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE साल 2026 री 12वीं कक्षा री सप्लीमेंट्री परीक्षा सारू अर्जियां लेवणो शुरू कर दिनो है। बोर्ड रे मुजब रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवारा सारू अर्जियां दाखिल करण और फीस जमा करावण रो काम 30 जून नु शुरू फेक्यो है। संबद्ध स्कूलों ने 8 जुलाई ताई परीक्षा संगम पोर्टल रे जरिए अर्जियां बोर्ड माय जमा करावणी फैला। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज बतायो कि मुख्य परीक्षा माए सप्लीमेंट्री आवण वाला या किनी एक विषय माए अंक सुधार सारू विद्यार्थी आ परीक्षा दे सकेला। सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई हैला। आखिर माए खास समाचार एकर फेरू सुन ले राओ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो VBG राम जी माथे आवता 5 साल माए 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करया जावेला। जयपुर माए 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो फियो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह AI ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य माए चौमासा री बिरखा सरूफी। आवता 24 घंटा माए कई ठोणा भारी बारिश रा आसार। और प्रदेश माए ओ महीनो एंटी डेंगू महरा तौरू मनायो जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसानवाणी।

किसान भाइयों और बहनों, राम राम। आज किसानवाणी कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। स्टूडियो में विशेषज्ञ पधारी हैं सुनीता वर्मा, आप कृषि प्रवेशक के पद पर ग्राम पंचायत अकबरपुर पंचायत समिति उमरेण में कार्यरत हैं। ये आज हमें जुलाई माह में की जाने वाली शस्य क्रियाएं के बारे में जानकारी देंगी। अतः किसी श्रोता को इस संबंध में कोई जानकारी लेनी हो तो स्टूडियो के फोन नंबर पर फोन करके श्रोता जानकारी ले सकते हैं। स्टूडियो के फोन नंबर है, एसटीडी कोड है 0144, फोन नंबर है 2700955, दूसरा नंबर है 2940

0: 6675। फोन नंबर एक बार श्रोता पुनः सुने, एसटीडी कोड है 0144। फोन नंबर है 2700955। दूसरा नंबर है 2940675। श्रोता इन नंबर पर करके विशेषज्ञ से सलाह पा सकते हैं। सुनीता जी आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: देखो सुनीता जी, किसी श्रोता का फोन कॉल आए, उससे पहले जो आज अपन बात करें, जुलाई का माह जो की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में जो इस समय जो खरीफ की फसलें हैं उनका क्या, कौन कौन सा क्या उचित समय है, इस समय कौन कौन सी फसल की अपन बुआई कर सकते हैं?
1: इस समय अगर हम खरीफ फसलों में जैसे बुआई की बात करें, तो खरीफ फसलों में जैसे बाजरा है मुख्यतया, ज्वार है, मक्का, ग्वार, मूंग, अरहर, इन फसलों की बुआई किसान मुख्यतया इस क्षेत्र में विशेष रूप से करता है।
0: बिल्कुल। देखो सुनीता जी, इस समय ये कुछ जो समय पूर्व जो बरसात हुई थी उसमें भी किसान भाई ने ज्वार और बाजरा इनकी बुआई क्षेत्र में कर दी है, साथ ही कुछ किसान भाई जो रह गए हैं वो इस समय बुआई कर सकते हैं। इनका खरीफ की फसलों की बुआई का उचित समय कब तक उपयुक्त रहता है?
1: खरीफ फसलों की बुआई के उचित समय का, उपयुक्त समय का अगर हम बात करें, तो 15 जुलाई तक खरीफ फसलों की बुआई की जाती है, उसके बाद इसकी देरी से बुआई मानी जाती है। तो किसान भाई जिन्होंने बुआई कर दी है और जिन्होंने बारिश नहीं होने की वजह से अभी तक बुआई नहीं की है, तो जैसे ही बारिश हो जाती है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से बुआई कर देनी चाहिए।
0: बिल्कुल। देखो सुनीता जी, जिन किसान भाई ने किस फसल की बुआई कर दी है वो बहुत अच्छा है, वो आगे के लिए काम आएंगे, लेकिन इस समय जो किसान भाई ने नहीं की है उनके लिए जो किस्म है इन फसलों की खरीफ वाली बुआई, तो उनमें किस्मों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ऐसे में अगर बात करें अपने, जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, अरहर है, ग्वार है, इनकी कौन कौन सी किस्में अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं और बढ़िया उत्पादन देने वाली?
1: किस्मों की अगर हम बात करें, जैसे बाजरा में है HHB 299 है, RHB 173, RHB 121, और इसके अलावा जैसे हाइब्रिड अगर हम बाजरा की बात करें तो जैसे पायनियर है, इसके अलावा जैसे हम ज्वार की किस्मों की बात करें तो CHS 16 है, CHS 17 है, इसके अलावा जैसे मक्का की अगर हम किस्मों की बात करें तो माही कंचन और माही ध्वल, और इसके अलावा जैसे ग्वार की किस्मों की बात करें तो HG 365 है, RGC 936, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा जैसे अगर हम अरहर की बात करें तो पूसा अरहर 16 है।
0: सुनीता जी, इस समय जो अरहर है वो काट के आरेड के नाम से जो बोलते हैं, जो कार्तिक में इसमें अक्टूबर नवंबर में जाके कटाई हो जाती है उसकी, तो वो बहुत क्षेत्र में बुआई करते हैं, तो उसकी जो प्रमुख जो किस्में हैं वो अपने किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी दे दें।
1: अरहर की किस्मों की अगर हम बात करें,
0: देखो सुनीता जी अगर किसी श्रोता का फोन कॉल है, सुनते हैं पहले एक कॉल। हाँ जी नमस्कार जी।
2: हाँ जी नमस्कार सर।
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
2: मैं पप्पू बोल रहा हूँ सर, कस्टमर से।
0: हाँ जी पप्पू जी, बताएं क्या जानकारी लेनी?
2: जी एक तो ये भूमि उपचार के बारे में जानना चाहते हैं भाई, जैसे बाजरा वगैरह बोए तो उसकी भूमि उपचार कैसे?
0: हाँ बिल्कुल पप्पू जी, बहुत अच्छी बात है। बाजरा बुआई करने से पहले अगर अपन भूमि उपचार करेंगे तो आगे कीट बीमारी लगने का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा और अपनी भूमि उपचारित हो जाएगी।
1: जैसे भूमि उपचार की अगर हम बात करें तो जैसे 100 से 150 किलोग्राम या 100 किलो गोबर का खाद है, जो गड़ी हुई गोबर की खाद है, उसमें 2 से 250 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके 7 से 10 दिन के लिए उसको छाया के अंदर रख दे, और उसमें थोड़ा गुड़ का मिक्सर तैयार करके उससे उसको अच्छे से मिला दे, अच्छे से उसमें नमी होनी चाहिए। उसके बाद में आप 7 से 10 दिन के बाद में उसको आप भूमि उपचार के लिए काम में ले सकते हैं।
2: ये एक बात थोड़ा पूछना चाहता हूँ, जो ट्राइकोडर्मा जो है ये कहाँ से ले, हम कहाँ से मिलेगा?
1: ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हैं जैसे कोई दुकान है जैसे, या फिर इसके लिए आप जैसे कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसकी सही जानकारी दे देंगे कि आपको कहाँ से कौन सी चीज कहाँ से लेनी है।
2: और उन्नत जो किस्म है उनके बारे में, जैसे आप बाजरा बोएंगे तो कौन कौन सी वो
0: बाजरा की उन्नत किस्म जानना चाहते हैं?
1: बाजरा की किस्मों की अगर हम बात करें तो जैसे HHB 299 है, RHB 173, HHB 67 है, इसके अलावा जैसे अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो पायनियर बाजरा भी आप इसमें काम में ले सकते हैं।

0: सर ये जो खाद है डीएपी वगैरह ये तो मिलता नहीं, तो फिर कौन सा खाद बढ़िया रहेगा देना उसमें?
1: डीएपी वगैरह मिलता है, इसके अलावा आप जैसे जैविक खाद काम में लीजिए, जैसे घर पे ही तैयार करके वर्मी कंपोस्ट खाद है या कंपोस्ट पिट में खाद तैयार करके अच्छे से वो काम में लीजिए, ताकि रासायनिक जो प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के शरीर पे उनसे भी बचा जा सके और उसके जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे दिखाई देंगे।
2: जी पप्पू जी, शायद आपको जानकारी मिल गई होगी। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी।
3: नमस्कार सर।
2: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
3: धर्मवीर बोल रहा हूँ सर।
2: धर्मवीर जी कहाँ से?
3: दापुरी से।
2: हाँ जी धर्मवीर जी बताएं क्या क्या जानकारी चाहिए?
3: सर बाजरे में गिंडार लग रही है, तो किस चीज की दवाई लाएं?
2: अच्छा अच्छा, बाजरे में, बाजरा बोए कितने दिन का हो गया बाजरा?
3: 20 दिन हो गए सर।
2: अच्छा अच्छा 20 दिन में, अभी बुआई करते ही वो जड़ में कोई कीड़ा लग गया?
3: हाँ।
2: जड़ में लग रहा है या वो पत्तियों काट रहा है?
3: दोनों तरफ है सर, ऊपर भी है नीचे भी है जड़ में।
2: जी
4: हेलो। हाँ
3: बताइए सर।
2: जी
1: हाँ जी, तो आप कीटनाशी का स्प्रे कर दीजिए।
3: दवाई कौन सी है मैम?
1: इसमें आप जैसे एक तो ब्यूवेरिया बेसियाना नाम की दवा आती है जो जैविक भी है, उसका आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं।
3: अच्छा।
1: 50 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिला करके, और इसमें जैसे इसकी छोटी अवस्था में रहती है गिंडार तो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
3: अच्छा।
1: तो इसमें पहले आपको गर्मियों में जैसे गहरी जुताई करनी चाहिए थी, और इसके अलावा बीज को उपचारित करना चाहिए था इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा से या क्लोरपाइरीफोस से, तो इसका प्रभाव कम दिखाई देता। अब जैसे अगर इसमें हो गई है तो आप इसमें दवाई का स्प्रे कर दीजिए।
3: मैम दवाई भी ऐसी बताओ जो जड़ से भी हमारी खत्म हो।
1: एक तो बेसिलस थुरिजेंसिस नाम की आती है जैविक दवा, तो और रासायनिक अगर आप काम में लेते हो तो एम्प्लीगो नाम की दवा आती है, उसका स्प्रे कर सकते हो 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है।
3: ओके मैम।
2: हेलो हाँ जी, देखो सुनीता जी किसी श्रोता से संपर्क नहीं हो पाया। जो अपन बात कर रहे थे इसकी अरहर की किस्मों की,
1: अरहर की किस्मों की अगर हम बात करें, पूसा अरहर 16, निर्मल दुर्गा
2: जी,
1: पूसा अरहर 151, ये बहुत ही बढ़िया वेरायटी है जिनका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं और ज्यादा पैदावार ले सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखो आपने जो बताई किस्में, और मूंग, मूंग की फसल भी अपने किसान भाई अपनी भूमि सुधार के लिए भी करते हैं और उत्पादन के लिए भी करते हैं, तो मूंग की फसल की कोई किस्में ऐसी हो जिससे किसान भाई बुआई करके पैदावार अच्छी ले सके?
1: मूंग की किस्मों की अगर हम बात करें तो जैसे MH 1142 है, MH 421, और एक वेरायटी है IPM।
2: सुनीता जी की श्रोता का फोन कॉल है, सुनते हैं। हाँ जी नमस्कार जी।
5: नमस्कार सर।
2: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
5: राजेंद्र सर।
2: हाँ जी राजेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं?
5: मालाखेड़ा से।
2: हाँ जी राजेंद्र जी बताएं क्या जानकारी चाहिए?
5: सर हमारे यहाँ ज्वार और बाजरा में ये गिंडार बहुत ज्यादा लग रही है।
2: ज्वार और बाजरा में?
5: हाँ जी
1: हाँ जी, तो उसमें आपको सबसे पहले तो भूमि उपचार करना चाहिए था, बीज उपचार करना चाहिए था, और गर्मियों की गहरी जुताई करनी चाहिए थी ताकि फसल में ये मतलब सिचुएशन आती ही नहीं। अब अगर आ गई है तो आप इसमें जैसे जैविक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे इसमें दवाई रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं। अगर जैविक नियंत्रण की बात करें तो जैसे इसमें ब्यूवेरिया बेसियाना जो है इसका उपयोग कर सकते हैं
5: जी।
1: और रासायनिक में जैसे एम्प्लीगो नाम की दवा आती है, वो 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोल बना करके, और एम्प्लीगो नाम की।
5: अच्छा एम्प्लीगो।
1: हाँ जी
5: जी। अच्छा वो दवाई एक एकड़ में कितनी देनी है?

0: 100 से 120 ml।
1: 120 ml। अच्छा
2: हाँ, तो सुनीता जी अपन जो बातचीत अपने जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनाते हैं श्रोताओं को ये संदेश।
3: सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई।
4: हाँ,
3: ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
2: तो भी अपन बात करें। हाँ, तो देखो सुनीता जी अपन जो बातचीत कर रहे थे, किस्मों के बारे में आपने श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके साथ साथ अगर अपन बीज दर की बात करें तो बाजरे का और ये जो अरहर का प्रति एकड़ कितना बीज उपयुक्त रहता है?
0: बाजरे में अगर हम बीज दर की बात करें तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति 4 बीघा में 4 किलो बीज पर्याप्त रहता है। ज्वार में अगर हम बीज दर की बात करें तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है, जो दाने के लिए बोई जाती है। इसके अलावा जैसे हम मक्का में बीज दर की बात करें तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति 4 बीघा के हिसाब से। ग्वार की फसल में अगर हम बीज दर की बात करें तो 10 से 12 या 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। इसके अलावा जैसे मूंग की फसल में अगर हम बात करें दानों के लिए तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी तरीके से अगर हम अरहर जो है दाल वाली फसल उसकी बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त है।
2: और सुनीता जो श्रोता बार बार पूछ रहे हैं फसल में जो कीड़े लग रहे हैं, तो ऐसे में बीजोपचार करके फसल की बुआई करने से क्या लाभ होते हैं? कैसे बीजोपचार अपने जो किसान भाई करें?
0: बीजोपचार की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पहले फंजीसाइड से, जैसे FIR फंजीसाइड से यानी फफूंदनाशी से पहले बीजों को उपचारित करना चाहिए, उसके बाद इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी से बीजों को उपचारित करना चाहिए, उसके बाद में राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित करके फिर बीजों को छायादार प्लेस में सुखा करने के बाद में बुआई करना चाहिए, ताकि जो पौधे जैसे उगते हैं, बीज उगते ही जो बीमारियाँ लगती है उनसे फसल को बचाया जा सके।
2: हाँ, तो सुनीता जी किस श्रोता का फोन कॉल है, सुनते हैं एक कॉल। हाँ जी, नमस्कार जी।
6: नमस्कार जी।
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
6: मुकेश चंजाट बोल रहा हूँ साहब, गांव डाकपुरी से।
2: हाँ जी मुकेश जी, बताएं।
6: सर जी, जो आप ये जो देसी ज्वार बोए हैं मवेशी इनको खवा वा के लिए,
2: हरे चारे के लिए,
6: हरे चारे के लिए
2: जी,
6: तो ये अषाढ़ में बोए जावे अपने बारिश से
2: जी,
6: तो उगियाई मान लो 4 आंगल के आसपास की है वो, और पत्ती में जैसे लोया में जंग लगे
2: ऐसे पीलापन लाल पीलापन आ रहा है,
6: हाँ, और खत्म हो रहे पेड़
2: जी,
0: तो इसके लिए आप जैसे उसमें आप ये भी कर सकते हो कि उन पौधों को ले जा करके नजदीकी जो कृषि कार्यालय है उसमें संपर्क करें, ताकि उसकी यथा स्थिति का पता लग सके कि उसमें कोई कीट का प्रभाव है या फिर बीमारी का प्रभाव है।
6: मैम कीट ही होता क्या? और तो
0: नहीं, पत्तियां पीली पड़ रही है या फिर मतलब क्या प्रभाव है?
6: पत्ती पीली पड़ के जैसे अपने लोया में जंग ना लगे।
0: हाँ, तो आपको भूमि की जांच करवानी चाहिए या फिर कोई जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व या किसी चीज का स्प्रे करना चाहिए आपको, और बाकी फिर भी अगर उसमें दिक्कत होती है तो आप नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
6: ठीक है, कुछ वैसे उपाय था।
2: हाँ, तो सुनील जी अपन जो बात कर रहे थे बीज दर के बारे में और बीजोपचार के बारे में, अपने खरीफ की फसलों के बारे में आपने विस्तार से बताया, तो इसके अलावा इस समय जो बाजरे की फसल है, कई जगह करीब महीने भर की फसल होने को आई, 30 दिन के करीब फसल होगी, तो ऐसे में जो फसल बड़ी हो रही थी उसमें क्या तो रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ये बरसात होती है, और निकाई गुड़ाई के लिए क्या कुछ सावधानी बरतें और कैसे करें?
0: जैसे फसल, जिन फसलों की बुआई हो चुकी है जैसे खरीफ सीजन में, तो उनमें जैसे यूरिया खाद के रूप में पहले पानी के बाद में दिया जाता है या पहले दिया जाता है।

0: है मिट्टी की सिचुएशन के आधार पे। तो उसमें जैसे यूरिया 10 से 15 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया का स्प्रे करें, छिड़का
1: छिड़काव कर सकते हैं।
0: अगर लिक्विड फॉर्म में है तो स्प्रे कर दें, इसके अलावा जैसे दानेदार फॉर्म में है तो उसका छिड़काव कर दें, बुरकाव कर दें। इसके साथ ही अगर हम निराई गुड़ाई की बात करें, जैसे खरपतवारों का प्रकोप इस
1: टाइम, बिल्कुल जैसे बरसात होगी या बरसात से पहले भी हल्की बारिश हो रही, तो ऐसे में बाजरे की फसल के साथ साथ और भी जो फसल अपने बुआई कर रखी है उसमें घास का उगना स्वाभाविक है, और खरपतवार जब बड़ी हो जाती है तो मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो उसके बचाव के लिए सही उत्पादन उससे मिले तो निकाई गुड़ाई और घास फूस को निकालना आवश्यक रहता है।
0: इस समय जैसे नमी की अधिकता होगी, जैसे बारिश आएगी तो खरपतवारों का उगना स्वाभाविक है, तो इससे क्या है।
1: देखो सुनीता जी, किस श्रोता का फोन कॉल है, सुनते हैं ये कॉल। हेलो
2: जी, राम राम साहब।
1: राम राम जी, कौन बोल रहे हैं सर?
2: राम किशन बोल रहा था सर, खेड़ली से।
1: जी राम किशन जी, बताएं क्या जानकारी चाहिए।
2: गवार बो रखी है, बड़ी खूब हो रही है, उसको फड़ी कम आ रही
1: है। कितने दिन की बुआई की होगी?
2: अभी 1.25 महीने की होगी।
1: अच्छा, तो 100 महीने में इतनी जल्दी तो फली कहाँ से आएंगी? ये दाने के लिए तो बोया होगा, सब सब्जी के लिए तो बुआई थोड़ी कर रखी है?
2: सब्जी के लिए।
1: अच्छा अच्छा, हाँ।
0: तो जैसे आप कह रहे हैं कि 1 महीने की हो गई है, तो अब जैसे नमी की अधिकता है तो उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो ज्यादा होगी, और हाँ वानस्पतिक वृद्धि होने के बाद में उसमें फली ज्यादा आएगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप फसल का वो देख रेख करो, वनस्पतिक वृद्धि के बाद में अच्छी फलत प्राप्त होगी आपको।
2: और एक अरहर के लिए पूछना था, कौन सी किस्म के बोल अरहर के लिए?
0: अरहर की किस्मों की बात करें, पूसा अरहर 16 काम में ले सकते हैं आप। एक पूसा अरहर 151 है, एक निर्मल दुर्गा के नाम से काफी अच्छी वैरायटी है, ये आप काम में ले सकते हैं।
1: हाँ तो सुना जी, आप बता रहे थे निकाई गुड़ाई के बारे में, जो अपने बाजरे की और खरीफ की फसलों में
0: निराई गुड़ाई की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस टाइम इस समय जैसे खरपतवारों का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि श्रमिकों के द्वारा समय समय पर फसल में से निराई गुड़ाई का कार्य करवाते रहें, और अनुवांछित जो खरपतवार है फसल के अलावा उनको हटाते रहे, जिससे हवा में मिट्टी के अंदर जो वायु संचार है वो बढ़ता है और फसल की पैदावार अच्छी प्राप्त होगी। इसके साथ ही जैसे अगर खरपतवार ज़्यादा है तो आप रासायनिक दवाई भी काम में ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सुनीता जी, कई बार क्या होता है ज्यादा क्षेत्र में किसान ने बुआई कर रखी है और उसमें मानव श्रम नहीं लगा पा रहा है या किसी कारण से नहीं कर पा रहा, तो रासायनिक उसका खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकता है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसमें कौन सी दवा प्रयोग में ली जाती है और कितनी मात्रा में?
0: रासायनिक दवाओं की अगर हम बात करें तो जैसे ज्वार में है खरपतवार, जैसे बीज उगने से पहले और बुआई के बाद में जैसे एट्राजिन नाम की दवा काम में ली जाती है, बाजरा में भी तो 50% WP जिसकी कंसंट्रेशन होती है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है।
1: जी, और इसमें निकाई गुड़ाई जो अपन मानव श्रम द्वारा करते हैं, ऐसे में और रासायनिक जो आपने खरपतवार नाशी बताया, ऐसे में क्या उसमें फायदा नुकसान रहता है?
0: मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगी कि जो मानव श्रम है वो ज़्यादा उपयुक्त है रासायनिक दवाइयों की बजाय, उससे एक तो किसान का जो आर्थिक नुकसान है उससे उस किसान को बचाया जा सकता है, इसके अलावा जैसे अन्य लोगों को इसके रोजगार की भी प्राप्ति होती है और फसल भी स्वस्थ रहती है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: और बिल्कुल भूमि की दशा भी ठीक रहती है,
0: मृदा की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, तो इसलिए किसान भाइयों को रासायनिक दवाओं का प्रयोग न करके जो श्रमिकों के द्वारा ही खरपतवारों का नियंत्रण करवाना चाहिए।
1: जी जी सुनीता जी, किसी श्रोता का फोन कॉल है, सुनते हैं एक कॉल। हाँ जी नमस्कार जी, हेलो हेलो तो शायद श्रोता संपर्क नहीं हो पा रहा, तो सुनीता जी को अपन आगे की चर्चा अपन जारी रखेंगे, पर उससे पहले सुनवाते हैं ये संदेश।
3: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो सुनीता जी, देखो अपने इसमें जो फसल की मुख्य तैयारी और जो महीने भर की फसल है उसकी क्रिया शस्य क्रियाओं के बारे में श्रोताओं को जानकारी दी। इसके साथ साथ जो अभी किसी श्रोता का फोन कॉल है सुनते हैं ये फोन कॉल। हाँ जी नमस्कार जी।
4: नमस्कार सर।
3: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?

0: रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ, तो सुनीता जी को अपने इसमें जो फसल की मुख्य तैयारी और जो महीने भर की फसल है उसकी क्रिया शस्य क्रियाओं के बारे में श्रोताओं को जानकारी दी। इसके साथ साथ जो अभी किसी श्रोता का फोन कॉल है, सुनते हैं ये फोन कॉल। हाँ जी, नमस्कार जी।
4: नमस्कार सर।
3: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
4: हुकम चंद सैनी बोल रहा हूँ सर।
3: हाँ जी हुकम जी, बताएं क्या क्या जानकारी लेनी है?
4: मुझे जानकारी चाहिए थी, जैसे अभी खरीफ के मूंग लगाने तो टाइम है क्या? एक तो
3: जी।
4: दूसरी बात, हमारे यहाँ इधर तो बीज है ना, कोई सर्टिफाइड मिल नहीं रहा, मैं संतुष्ट हूँ नहीं, तो बीज कहाँ से ले और बीज उपचार कैसे करें?
3: जी,
5: मूंग की अगर आप बुआई करना चाहते हो तो उपयुक्त तो समय है, आप कर सकते हो मूंग की बुआई। और अगर आपको यहाँ पे अगर बीज की उपलब्धता नहीं है तो आप जयपुर से भी मंगवा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बड़े क्षेत्र में मूंग की खेती की जाती है, तो आपको बहुत ही अच्छा बीज मिल जाएगा
4: जी। बीज उपचार के बारे में और बता देते, जैसे बीज ले आए तो क्या?
5: बीज उपचार के लिए जैसे अगर आप दुकान से बीज लेते हैं तो वो तो उपचारित आता है, फिर भी अगर जैसे आप फंजीसाइड से फफूंदनाशी से कर सकते हैं, आप मेनकोजेब से कर सकते हैं, 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। इसके अलावा जैसे इंसेक्टिसाइड से आप कीटनाशी से आप इसको बीज को उपचारित कीजिए, और फिर राइजोबियम कल्चर से।
4: अच्छा जी।
5: और फिर अच्छे से उसको सुखा करके छाया में और उसकी बुआई कीजिए।
4: ठीक है साहब, धन्यवाद
3: जी। सुनीता जी, देखो इस समय जो फसल अपनी बाजरे की फसल या खरीफ की जो भी फसलें हैं, तो इसमें कम वर्षा होने से और मात्रा से अधिक वर्षा होने पर क्या कुछ किसान भाई सावधानी बरतें और कैसे इसका फसल अपनी सुरक्षित रखें?
5: मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि जैसे अगर बरसात कम होती है तो उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है सिंचाई के लिए, तो उनका प्रयोग करते हुए अपनी फसल को सुरक्षित रखें, सिंचाई करें, ताकि जो फसल है वो नष्ट होने से बच सके। इसके साथ ही जैसे अगर बरसात की क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे बरसात ज़्यादा हो गई है, तो उसमें अपने खेतों में जैसे जल निकास की व्यवस्था रखें और जल निकास करके फसल को गलने सलने से बचाएं
3: जी। और देखो अब सुनीता जी, अपन अगर आगे बात करें, अपन ये तो अपन ने जो अपनी दलहन ये फसलों के बारे में बताया, इसके साथ साथ सब्जी की खेती भी इस समय किसान भाइयों ने बहुत कुछ कर रखी है, तो ऐसे में कौन कौन सी सब्जी इस समय बोई गई है या बोने वाली हैं, और उसमें क्या सावधानी और क्या परेशानी किसान भाइयों को आती है
5: इस समय? अगर हम
3: देखो सुनीता जी, किस श्रोता का फोन कॉल है, पहले सुनते हैं ये कॉल। हाँ जी नमस्कार जी।
6: नमस्कार।
3: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
6: मैं राजेश मीना बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत जिरी, तहसील प्रतापगढ़, जिला अलवर।
3: जी जी राजेश जी, बताएं क्या जानकारी लेनी
6: है? अभी ये जो हमारे क्या है, वो मक्का की फसल गिरा था, तो मैं बोया था तो मक्का उगते पीली पीली शोभ लग गया पौधा से, अब वो दिमक की शिकायत है क्या है?
3: अच्छा, नीचे कोई कीड़े का प्रभाव है?
6: हाँ हाँ हाँ, रोकथाम के लिए।
3: कितने कितने दिन की बुआई की होगी?
5: हाँ जी, तो आप ऐसे करना कि जैसे अगर उसमें पत्तियों में पीलापन आ रहा है तो जैसे यूरिया का आप प्रयोग करें, इसके साथ में जैसे एक एकड़ में 45 किलोग्राम यूरिया के साथ में 5 से 6 किलो जिंक सल्फेट 33% वाली आप इसमें प्रयोग करें। इसके साथ में जैसे 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला करके मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करवा दें।
6: जी जी ठीक है साहब, धन्यवाद
3: जी। राजी, तो सुनीता जी को सब्जी की फसल जैसे अभी इस समय गिया है तो ये ऐसे में उनकी अच्छा उत्पादन अपने को मिले, तो उसमें इस समय जो कीट और बीमारियों का प्रभाव, जैसे बरसात का मौसम होगा कीटों का प्रभाव ज्यादा हो रहा है, तो उसके बचाव के लिए अपने जो किसान भाई हैं क्या क्या कुछ सब्जियों में सावधानी रखते हैं
5: इस समय? जैसे अगर खरीफ में हम सब्जियों की बात करें तो जैसे लौकी है, भिंडी है, जो कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं, बुआई की हुई है, इनमें पैदावार जैसे आ रही है इनकी, तो इसमें कीड़ों का प्रभाव जो प्रभाव है वो देखने को ज़्यादा ही मिल रहा है। तो इसमें जैसे कोई सबसे पहले मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि वो जैविक नियंत्रण

0: जैसे नीम ऑयल है, नीम तेल 203 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करें। इस फल मक्की का इससे नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे फेरोमोन ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप भी इसमें काम में ले सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण की अगर हम बात करें तो साइपरमेथ्रिन नाम की दवा आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि वो रासायनिक दवाइयों का प्रयोग न करके जैविक जो भी जैविक विधियों से नियंत्रण करें। इसके साथ ही जैसे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी किसान भाइयों को, जो काम में लाने से बीमारियों से बचा जा सकता है, फसल को स्वस्थ रखा जा सकता है। जैसे मिट्टी पानी की जांच समय पर करवाएं और उसके अनुसार ही फसल के अंदर किस चीज पोषक तत्व की कमी है।
1: तो देखो सुनीता जी, अभी जो आपने बताया कि मिट्टी पानी की जांच कराती है, किस समय ज्यादा उपयुक्त रहती है और कैसे इसकी करवानी चाहिए किसान भाइयों?
0: मिट्टी की जांच की अगर हम बात करें तो जिस समय खेत खाली हो जाता है, जैसे फसल कट जाती है, उसके बाद में जैसे पांच जगह से, एक खेत में पांच जगह से, बीच में से और चारों कोनों में से मिट्टी लेनी चाहिए। उसके बाद में उसको मतलब थोड़ी ऊपर से मिट्टी हटा करके वी शेप में 5 cm की मिट्टी 2 inch की मोटाई में लेकर के और उसका एक मिक्सर तैयार करके उसको जब तक सेपरेट आमने सामने के जैसे 4 भागों में बांट के उसमें आमने सामने के बाद हटाने हैं, और जैसे 300 से 400 ग्राम मिट्टी बच जाए वो एक सैंपल तैयार हो जाता है, तो वो जाँच करवाएं। उसके बाद में फसल में उसके अनुसार ही काम में ले।
1: हाँ बिल्कुल, जो भूमि मिट्टी की जांच का जो स्लेब आए उसके अनुसार खाद और इनका रासायनिक खादों का और इनका प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ अपने जो किसान भाई उनको कुछ विशेष संदेश आप देना चाहें, जिससे अपनी जो भूमि है, जमीन बचाओ जो अभियान है, उसमें भूमि अपनी सुरक्षित रहे, उसकी भौतिक दशा ठीक रहे, और जिससे उससे अपन उत्पादन लेते हैं, अपना भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो क्या कुछ विशेष संदेश देंगे आप?
0: मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे गर्मियों में खेत खाली होते हैं, गर्मियों की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मिट्टी पानी की जांच के बारे में मैंने बताया, इसके अलावा जैसे जैविक खाद है या जैसे गोबर की खाद है, उसको अच्छे से सड़ा गला करके जो गड्ढे के अंदर इसको तैयार करना चाहिए, तो इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ में जैसे भूमि उपचार है, बीजोपचार है का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को।
1: जी सुनीता जी, आज आप स्टूडियो में पधारी और श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

गीत को गाया था सुरेश वाड़ेकर ने, वो लिखे थे गुलजार ने।

जाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट यमला पगला दीवाना।

गीत को गाया था अमित कुमार लता मंगेशकर ने, संगीत था आर डी बर्मन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बूट पॉलिश फिल्म से, गीत को गाए हैं मन्ना डे आशा भोसले ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना

0: ਪੜਦਾ ਚੱਲ
1: ਪੜਦਾ ਚੱਲ
0: ਪੜਦਾ ਚੱਲ
1: ਪੜਦਾ ਚੱਲ
0: ਜੇਰਾ ਕਈ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, पीडियाट्रिशियन अलवर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
1: जी हाँ, मानसून के दौरान हल्की सर्दी या खांसी होना सामान्य है, लेकिन कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे को दो दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में घरघराहट की आवाज आए, खांसी लगातार बढ़ रही हो, बच्चा ठीक से खा पी ना पा रहा हो या सामान्य से अधिक थका हुआ और सुस्त दिखाई दे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। छोटे बच्चों की स्थिति कभी कभार बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ देने से भी बचना चाहिए। समय पर चिकित्सा सलाह लेने से बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है और संक्रमण के घर या स्कूल में फैलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं।
0: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट

0: से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.2

0: 3% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी।

0: मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise
3: will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
4: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
3: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: फन। माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
1: दोस्तों लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
0: उंगली में अंग

0: नदी नदीना,
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना,
0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

0: अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच्चे का हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ निभाती है।

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है। उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं। कभी तुम मुस्कुराकर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है। शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाये गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूं तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

उस बात से अनजान हूं जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हो, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 अंतर्गत लंदन के ओवल में खेले जा रहे इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल का सीधा प्रसारण।

0: आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी, वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
0: Unbeaten in the group stage and looking absolutely ruthless, ICC Women's T20.

0: जी मेगा, और अब हम अपने मेहमानों का भी परिचय करा दें। हमारे साथ आज हैं ख्याति गुलानी पूर्व क्रिकेटर, जुशानुल यकीन पूर्व क्रिकेटर, और जी राजा रमन वरिष्ठ खेल पत्रकार। तो सवालों की शुरुआत राजा आपसे ही
1: जी।
0: टॉस की आज के मैच में कितनी बड़ी और क्या भूमिका रहने वाली है, इस बात को देखते हुए कि इस विश्व कप में द ओवल मैदान पर जो इससे पहले दो मैच हुए हैं दोनों चेस करने वाली टीमें जीते हैं।
2: मेरा अपना मानना है धर्मेंद्र के टॉस का कोई

लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम हवाओं पे लिख।

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: 20 जुलाई

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना, गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंग दरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

तो की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनिक ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में फिल्म फांसी का ये गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध।

0: आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियाँ चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, वन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है। तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नज़र आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफ़र में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नज़र आईं तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियाँ हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियाँ देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियाँ देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता माँ

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुन कर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं, बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से, और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम। और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का ये सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहाँ सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है, तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है, और बारिश जल्द ही आ जाए हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, 100 साल पहले तो नहीं 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है, भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की, हे विविध भारती तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना, हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे,

जवाब मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री। फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी ख़ास इंसान अनजाना रिश्ते की तरफ अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफ़र शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफ़र में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं।

0: फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर, रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा, जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब यह बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है, जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है, उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?
1: दिल थाम चले हम आज

इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नज़रों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए, फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं 4th ईयर कॉलेज में था, इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने

0: आय के मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है। सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं,

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी ज़रा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज़्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफ़ी साहब की गीत के इस आवाज़ को पर्दे पर कौन अपने होंठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, ज़रूर वहाँ बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहाँ तक पहुँचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, ज़रा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहाँ मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है। मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ ये टोटका तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियाँ होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा ख़राब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाएँ, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें ज़रूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज़। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात,

रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो, लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं, जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बंध जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने, तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा, ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा? अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज़ दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना।

0: रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं, रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए खूब सारी क्लिक्स लेते हैं, लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का। लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नज़ारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नज़ारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतज़ार है, लेकिन कुदरत भी और इंतज़ार करा रही है, इंतज़ार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि ज़िंदगी के सुरीले सफ़र का एक जीवंत दस्तावेज हैं। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है सुरीले सफर में आज, ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुँचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। ये हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ों पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वास में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

रोकती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय।

ऐसी बाहें हाय हाय ये निगाहें हाय हाय हाय ये निगाहें कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें।

ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है, एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 2:44 हुए हैं। हमारी आज के प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। आज प्रातः 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।